0: है लाइका रेडियो।
1: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you, so you can help people like Jasmine.
2: Oh, terrible weather.
1: It's raining cats and dogs out there, and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry, and we'll help keep you covered.
3: See ya, good luck with the interview.
2: Thank you, bye.
1: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Raj Badden drives you home every weekday afternoon at 4 p.m.

मिक्स। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्सियों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है भी हो

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग।

0: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
1: हर मौके पर काम ये आए घर घर खुशियां लाए
0: जिंदगी वहां सेट को माइक्रो
2: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज
3: डिस्कवर द इंडियन ओशन विद स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडेज बुक एक्सक्लूसिव एमिरेट्स हॉलीडे ऑफर्स टू मॉरिशस द मालदीव्स सेशेल्स एंड श्रीलंका
4: चूज फ्रॉम लग्जरी बीच एस्केप्स फैमिली रिसॉर्ट्स एंड इनक्रेडिबल मल्टी सेंटर हॉलीडेज ऑल एट एक्सक्लूसिव प्राइसेस
3: कॉल स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडेज टुडे ऑन 01923883100 दैट्स 01923883100.
4: At all protected. The wait is finally over.
5: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से.
4: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल.
7: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ Mirzapur.
4: पंकज त्रिपाठी as कालीन भैया, अली फजल as गुड्डू पंडित और Mirzapur के iconic characters अब सिनेमा में और भी bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
6: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
9: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02033736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
10: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
11: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
13: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर Taste the difference.
14: Hey, Vishpat Naga here. Remember to join me on Reload every weekday from 1 p.m. until 4 p.m. on Leica Radio.
15: The Breakfast Blend. Perfectly brewed by you. Donny Brasco on Leica Radio.
16: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That's

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
3: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
3: तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
4: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
5: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
6: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
5: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
6: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
7: This Friday, witness the ultimate clash between survival and pure malice.
8: Sir, मुझे मार देंगे, sir, मुझे बचालो, sir.
7: RFT Films and Entertainment brings you the ultimate face-off. Akshay Kumar versus Saif Ali Khan in Priyadarshan's masterpiece, Haiwan.
9: शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है. एक ही जीप की आवाज बार-बार सुनाई दे रही है.
7: Haiwan in cinemas this Friday, September 11th, across the UK and Europe. Book your tickets now.
10: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना.
11: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
5: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
12: Next, Kush on the Mid-Morning Show.
13: On Leica Radio.
12: London. Go online, listen and listen back. LikeRadio.com.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Maharaja Tours ke saath is November explore kijiye Singapore, Malaysia aur Thailand. Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok ke floating markets aur beautiful temples. Phir Pattaya aur Coral Island ka maza. Fantastical Far East from sirf £2,799 per person. Flights, 4-star hotels, Indian khana aur amazing excursions. Sab included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
2: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishnamurthy.
2: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
5: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
6: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
7: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
6: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
7: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
6: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
7: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
6: Apple Pay is available on compatible devices. Terms, conditions apply.
7: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
8: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
9: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
8: Available at ethnic grocery store near you. गणपति बाप्पा मोरिया.
10: 07300998823. नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
11: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio, Greater London.
12: Chupke, chupke, raat din, aansu bahar.
13: Aapka naya station, Leica Radio Ghazals, bahut jald aa raha hai.
11: Across London, this is Leica Radio.

बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। It's अंताक्षरी टाइम विद खुश।

0: 11.
1: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danu 11. Danu Properties.
2: Danu 11. 11. हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
3: Search is changing.
4: Customers aren't just using Google anymore.
3: They're asking AI.
4: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
3: One business, one recommendation.
4: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
3: Will your business be the answer?
4: Or the one that got left behind?
3: The future of search has already started.
4: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
3: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 02085748410
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
7: Royal Chai लाए हैं smart solution for your business.
8: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
7: Rich, authentic taste every single time.
8: Royal Chai, brewed for business.
7: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
9: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
10: I left behind everything I knew.
9: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
10: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
9: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
11: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
12: Hi, it's Ankit Tiwari.
13: Hi, it's Ankit Tiwari.
12: Keep listening to Laika Radio.
14: A Laika Radio classic plays now.

0: Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
1: जो सारे गामा जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया 1997 में पहले मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ मेरे फाइनल जीता। मेगा फाइनल बहुत मुश्किल था, पड़ा था। उससे ज्यादा बड़ी बात अभी ये थी कि उस मेगा फाइनल में जो जजेस की जो पैनल थी उसमें जजेस वो थे जिनको देखने के लिए लोग तरस थे।
0: Like Extra is here. Search for our podcast, Like Extra, on all major streaming platforms. London's favourite Bollywood hits are playing.
2: On Like Radio, London.

0: वोकल फ्लेक्स ऑफ राहत फतेह अली खान जी धड़क धड़क जाए प्लेइंग फॉर यू हियर ऑन रीलोड विद मी विश बटनागर ही इज आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक ऑल द वे थ्रू अंटिल संडे हियर ऑन लाइका रेडियो एंड एब्सोल्युटली ह्यूजली एक्साइटेड अबाउट दिस एज वेल द उस्ताद हिमसेल्फ राहत फतेह अली खान Going to be performing in the UK. Yep, TTO presents Ustad Rahat Fateh Ali Khan, a tribute to his uncle, Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, on his 30th death anniversary. One date only, and that is on Sunday, the 18th of April, 2027, at the O2 in London, radio partner Leica Radio. It's going to be absolutely, totally, and utterly awesome. Going to play you my ringtone in just a moment, but in the meantime, have a listen to this.
1: Leica Radio.
2: London's refreshing sound.
1: Leica Radio.

0: की नजर
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक
2: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एम्बिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स फीचरिंग व्यूज ओएसिस ओशंस एलीट्स फैशंस एंड स्पोर्ट्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू सो व्हाई वेट बी पार्ट ऑफ दुबई'स ग्रोथ स्टोरी कॉल द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई लंडन ऑफिस टुडे ऑन 02039635757 to arrange your meeting. London, get ready for an unforgettable night.
3: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
2: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
3: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
2: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
3: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
2: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
5: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
8: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
9: I left behind everything I knew.
8: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
9: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
8: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
10: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
11: Get back to school and back to saving. With the Aldi Super 6, it's as easy as 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's 6 award-winning fresh fruit and veg from only 49p. Including a healthy saving of 50% on mini apples. Talk about top marks for value. The Aldi Super 6, a super way to save.
12: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds. The responsible jeweler. Committed to value, quality and transparency. That's a

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
2: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
1: Available at ethnic grocery store near you. गणपति बाप्पा मोरिया.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
4: साफो ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड. महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
5: London, are you ready? As Surinderella is coming to you for autumn 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Catch it at the Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Desi panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
6: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TLCs apply.
9: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
10: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: One performer,
3: countless personalities,
2: a whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover, live UK tour 2026.
2: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
5: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
6: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02208767627
7: Leica Radio Network प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
8: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफार्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com
7: Feel good track Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है. अल नूर टेस्ट द डिफरेंस.
3: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान. A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

आंखों की शबनमी शरारत लिख दो। हाँ मेरा दिल कह रहा है तेरी पाजेब की झंकार पे, तेरे बाहों के चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत लिख दो। मेरा दिल कह रहा है तेरे उलझे गेसु सवार, इन आंखों के आईने में तेरा दुल्हन सा रूप निहारो, इस महकती जमीन की

0: Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
1: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
0: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
6: बिग बॉस में इस बार मिलेगा वरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान दरखास्तों में जान
0: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
7: Get back to school and back to saving. With the Aldi Super 6, it's as easy as 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's 6 award-winning fresh fruit and veg from only 49p. Including a healthy saving of 50% on mini apples. Talk about top marks for value. The Aldi Super 6, a super way to save.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Sounds.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: ये है लाइका रेडियो hubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Get back to school and back to saving. With the Aldi Super 6, it's as easy as 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's 6 award-winning fresh fruit and veg from only 49p. Including a healthy saving of 50% on mini apples. Talk about top marks for value. The Aldi Super 6, a super way to save.
0: One performer.
3: Countless personalities.
0: A whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
0: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: Okay, Laura, from the top.
7: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier. With personalized financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
8: Bollywood romantic hits throughout the night. This is The Love Sound.